खेलत खेलत आयो अनक जोहन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सत संचयो खायो अमृत नाम, करी कृपा ठाकुर पई अन

हर नाम जपत किस नाय मिजो जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालक जिन्ना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओर सतानी हर प्रताप जने अवर न जानी ओत बोध जन हर रसराते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपे हर का भक्त पर नहीं छपै

साध संगे अम्मे छोरे जे को जन मरन ते डरे साध जिना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श पिया सा नानक दाके बल बल जासा।

भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो आवस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावन चीत जो बहराई तास्यों प्रीत।

रे तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उचे ते ऊंचा भगवंत, सर्व समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते सो आज्ञाकारी।

गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन वाहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याए सदा मने अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसनार पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग त्यवर लुभावे। जय प्रसाद सुख से सुई जय मराड़ पैर तांका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को माने मुख तांको जस रसन बखान। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म।

जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने कर्णनाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना।

अवर ना भिखा एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेपा, जैसे जल में कमलिया लेपा। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दुखा, जैसे सूर सर्व को सोखा। ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समाण, जैसे राज रंग को लागे तो लपवाण। ब्रह्म ज्ञानी का तीर जे का, ज्यो वसदा को खोदे को चंदन लेपा। ब्रह्म ज्ञानी का ही गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रगास, जैसे तारी ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन अपने सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नाथ, रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,

ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला।

सुरा ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदाया देसा।

ब्रह्म ज्ञानी मुगता जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सबे ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान, निमख निमख नमस्कार ना ठाकर नमस्कार, निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रिय निरंजन दर्श, पर तेरे रूप ना पेखे नेतर, साध की टहल संत संग हित, कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा,

कई कोड ससियर सूरन खेतर, कई कोड देवदान विंदर सिर छतर, सगल समगरी अपने सूत तारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसासत।

प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सबकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी वाहिगुरु जी आसा महला तीजा करै अंदर

महाराज जी कहते भाई सब कुछ साडे अंदरों ही है, बाहर कुछ भी नहीं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा सो पावे। सारियां वस्तुआं जड़ियां ने वो साडे अंदर ही ने, बाहर जा के किसे वस्तु नूं पालन दी जरूरत नहीं है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहण दा भाव है जे किसे नूं माया चाहीदी है वह भी अंदरों ही मिल जाती है, प्रतिभा चाहीदी है वह भी अंदरों ही मिल जाती है, किसे नूं राज चाहीदा वह भी अंदरों ही मिल जाता है। जो भी वस्तु चाहीदी है संसार तो लैके निरंकार तक, हर वस्तु अंदरों मिल जाती है। महाराज जी कहते फिर बाहर की पालदे हो? बाहर की है? बाहर भटकण तो सिवाय और कुछ नहीं है। भटकना है, बंदा भटकदा रहिंदा। बाबा फरीद जी किन्ना लम्मा समा 35-36 साल जंगलां दे विच भटकदे रहे। आखिरकार उन्हां नूं भी यही बचन कहना पिया, जंगल जंगल क्या पव है, वन कंडा मोड़े हे वसी रब हयाली है, बाहर क्या ढूंढे हे। कहिंदे बाहर की लभदा फरीदा, रब ता तेरे अंदर वसदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये जिहड़ी पंगती है, कई बार असी जो सलोकां दा जाप करदे आ ना, पाठ है हयाली है, कई बार उत्थे हिमालया पर्वत कईआं ने सुनिया हुंदा, वह पाठ कर देंदे आ वसी रब हिमाली है, जो कि अर्थ का अनर्थ हो जाता उत्थे। इन्ना क शब्द उचारण बदलन दे नाल हयाली है, दो शब्दों नूं जोड़ के शब्द बनिया ही है, आली है। संस्कृत का वर्ड है आल्या, और संस्कृत का ही है हिरदे नूं और घर नूं, आल्या घर नूं कहिंदे आ, जोड़ के हयाली है शब्द बनदा। बाबा जी कहिंदे हिरदे रूप घर दे विचों वाहिगुरु वसदा है, उन्हों बाहर लभण की लोड़ नहीं पाई। जेड़े बाहर लभदे है इदा ही जिंदगी बतीत कर लेंदे अपनी। महाराज जी कहिंदे अंदर लभो, अपने दिल च लभो। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। कहिंदे दिल नूं खोज, दिल नूं लभ, फिर कोई परेशानी तेरे गल तेरे पल्ले नहीं पएगी। जिवें कहिंदे कई बार की हुंदा, ये चीजां भी जिहड़ियां ने अवस्था नाल संबंधित ने। जे कोई कहे भी किसी का दिल खोल के देख लवे बंदा, जा कोशिश करे भी मैं देखा अपना दिल खोल के, शायद बिच बैठा रब मिल जाए। ये मूर्खता की निशानी है भी बंदा कहे भी बाणी कहिंदी है थां थां ते रब दिल च वसदा है। साई दिल मह साई प्रगटै बुझै बुलंती नाए। थां थां ते महाराज जी ने बचन किया इनू खोल के देख लिए। इदा नहीं वो किसी नू दिखदा, ना इदा नजर आवे। दिल मह दा भाव है दिल दी एक अवस्था है, जिस अवस्था दे विच उहदा अनुभव हुंदा। माफ करना, साडा जिहड़ा दिमाग और दिल है ना,
ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹੈ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਰੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਇਹ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਿਲਦਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ।

गुर कलगीत बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जैसे गोयल गोयली ते तैसे संसारा कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा जागो जागो सूते हो चलिया वणजारा रहाओ नीत नीत कर बांधिए जे रहना होई पेंड पवे जियो चल सी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोहोगे ओसनो तुमको कौन रोई धंधा पिट्यो भाइयो तुम कूड़ कमावो ओ न सुने काती तुम लोक सुनावो जे ते सुता नानका जगाए सोई जे घर बूझे अपना ता नींद न होई जे चलदा लै चलिया के संपै नाले तां तन संचो देख कै बूझो बिचारे वणज करो मकसूत लेहो मत पछो तावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् प्रावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमावो तां व्यापारी जानिए लाहा लै जावो कर्म होवे सतगुर मिले बूझे बिचारा नाम खाने सुने नाम नामे व्यवहारा जो लाहा तोटा तवे वाट चलदी आई जो तिस भावे नानका साई वडे आई आसा महला पहला चारे कुंडा ढूंढिया को नीमी मैडा जे तद पावे साहेबा तू मैं हो तैडा दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम इको मैं हिको मैडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ सिद्धा सेवन सैद पीर मांगे रिद सैद मैं एक नाम न विसरे साचे गुर बुद्ध जोगी भोगी कापड़ी क्या पवे दसंतरा गुर का शब्द न चीन ही तत सार निरंतरा पंडित पादे जोए सी नित पड़े पुराणा अंतरवस्त न जाननी घट ब्रह्म लकाणा एक तपसी बन में तप कर नित तीर्थ वासा आपना चीने तामसी काहे पय उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न चूटी भ्रम आवह जावह एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे गुरते दर कर जानिए सो जाए सजाणे नानक नाम न विसरे साचे मन मान आसा महला पहला मन सा मने समाये ले भौजल सच तरना आ जगा दयाल तू ठाकर तेरी सरना तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दीजे गुरमुख नाम त्याइये मन मंदिर भीजे रहाओ कूड़ा लाल छोड़िए तो साच पछाणे गुरमुख नाम त्याइये मन मंदिर भीजे रहाओ कूड़ा लाल छोड़िए तो साच पछाणे गुर कै शब्द समाइए परमार्थ जाने ए मन राजा लोभिया लभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर स्यो बण आई कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मनमुख सच न भीजी कूड़ कूड़ गडावे लाल छोड़ो भाई हो लाल छोड़ो अंध्यो लालच दुख भारी साचो सह मन वसे हो में फेख मारी कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे गुरमुख सच न भीजी कूड़ कूड़ गडावे लाल छोड़ो अंध्यो लालच दुख भारी साचो सह मन वसे हो में बेख मारी दबदा छोड़ कुवाटी मूसो गे भाई एनस नाम सलाहिये सत गुर सरण आई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल में केता राखी अब अंतर सूका हर का नाम निधान है पूरे गुर दिया नानक नाम न विसरे माथे अमृत पिया समहला पहला चले चलन हार वाट वटाया तंत पिटे संसार सच न पाया क्या भविये क्या ढूंढिए गुर शब्द दिखाया ममता मोह सरजया अपने घर आया रहाओ सच मिले सचार कूड़ ना पाईए सचे स्यो चतलाए बोहड़ ना आईए मोया को क्या रोवो रोए न जानहू रोवो सच सलाहे हुक्म बचाणहू हुक्मी वजे लखाओ आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म संजाणिए हुक्मी पैदा जाए दरगह पाणिए हुक्मे ही सर मार बांदर बाणिए लाहा सच न्याओ मन वसाइए लिखिया पल्ले पाए गर्भ वंजाइए मन मुखिया सर मार वाद खपाइए ठग मुठी कुड़ियार बन चलाइए साहिब हृदय वसाए ना पछोतावहि गुनाह बख्शन हार शब्द कमावहि नानक मंगे सच गुरमुख घालिए मैं तुजबन अवर न कोय नदर निहालिए आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए मैं घर बन हरियावला सच टिके घर आए शब्द उतावला जय देखा तै सोए अवर न जानिए गुर की कार कमाए महल पछाणिए रहाओ आप मिलावे सच ता मन भावी चले सदर जाए अंक समावई सचा सह मन वसे वस्या मन सोई आपे दे वड्याईया दे तोट ना होई अबे तबे की चाकरी क्यों दर गए पावे पत्थर की बेड़ी जे चढ़ा है पर नाल बुढ़ावे अपनड़ा मन वेचिए सिर दीजे नाले गुरमुख वत पछाणिए अपना कर पाले जमण मरना आके तिन करते

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

सिमरन गर्म नाम से प्रभु के सिमरन दुख जमना से प्रभु के सिमरन काल पर हरे प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे प्रभु सिमरत कछ बिघ्न लागे प्रभु के सिमरन अंदन जागे प्रभु के सिमरन पाओ नाम व्यापे प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभु के सिमरन रिद सिद नौ निद प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभु के सिमरन दरगे मानी प्रभु के सिमरन होय सो भला प्रभु के सिमरन सुफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागू पाए प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सबके सुझे प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माए समाए प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जन का दास दसना प्रभु को सिमरे से तन बनते प्रभु को सिमरे से पत बनते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से वे मोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से परोपकारी प्रभु को सिमरे तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तन सुख विहावे प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तन अंध कनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानन सिमरन पूरे भाग प्रभु कह सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कह सिमरन कबू न झूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन निचले आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन प्रभु के

दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ नाथ संत मारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना भाई मनमोहा नाम तेरे संसाय जय मां प्यान दूत जम दल तक केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उदारी अनपुन चरण करत नहीं तरे हर को नाम तू कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हे सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे

परस सगल निस्तारे अश्वधी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत नंजन दर्स पर त्रया रूप न पिखे नेत्र साधगी टहल संत संगेत करन ना सुने काव की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा

आनंद तै नहीं बिजोग। तैसा स्वर्ण तैसी उन्माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साए जुगत नानक को पुर कहिए जीवन मुक्त पार नमके सगले टाओ जित जित कर राखे तैसा।

प्रटावे जाको अपनी करे बख्शीश ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिंड साहब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जी वह देख वडाई इसका बल ना इस हाथ कन कराम सब को नाथ।

संत का दुखी सदा वित्त, संत का दुखी किसे कहानी मित्त, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मानकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुखते डरे, संत के दुखी को

एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की पासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक तिसे न लागे दू जिसको हर पर मन चित आवे सो संसुला नहीं डरावे जिस प्राव अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोद सोद सोद सीजिया गुर प्रसाद तत् समूजिया जब देखो तब सब किस मूल नान सो सुखम सोई अस्तूल न किस जन्मे अक्ष मरे आपन चलते आवी करे आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्टि आपे आप सकल में आप अन जुगत रस्थाप्यो धाव्य अविनाशी नाही किस खंड धारण धार्यो ब्रह्मंडल अख भेग पुर प्रताप आप जपाय नानक जाप जिन प्रजाता सो भावंत सगल संसार उदृत मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दू विसारणी आपे मेल है कृपाल गुरु का सब जापे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिष्णु कृपा करे वडभागे नाम जपत पाए विश्राम नान तिन पुर को उत्तम करमान जो कुछ करे सो प्रभ के रंग सदा सदा से हर संग सह सुभाय विसो होए करने हर पछाणे सोए प्रभ का किया जन्मी ठलगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिसने उपजे तिसमाय समाय सुख संधान उन्हों बनाया है आप उसको आप दीनो मान नानन प्रभजन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ मिर्था जान हर जाके सिमरन उदरिये

की चिंता जिस मन माए तिसते फिरता कोई ना है। रे मन मेरे सदार जाप आवना सी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए। जे सो प्राणी लोचे कोए तिसमें नाही तेरे किस काम। गत नानक जाप एक हर नाम रूप अंत होए नाय मोहे प्रभ की जोत सगल कट सोए। तनमंता होए क्या को गर्भे जा।

सतमलियारे चन साध के धुत पियो अल्प साध को अपना जियो साध की दूर करो इनान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अंग बिघन ते साधु राखे हर गुण गाये अमतरा चाके उड़ गई संत दराया सब सुख नानक ते पाया मृत को जीव आलन हार भुखे को देवते आधार सर्वनिधान जाकी दृष्टि माए पुरम लिखे का लहना पाए सब के तिस्का वो करने

दह दिस प्रटाया निकी कीरी में कल राखे पद्म करे लश्कर गोल लाखे जिसका शासन काट दे आव ताको राख दे करात मान से जतन करत बापा।

पूरा कहो जाका मंत्र अमृत दिष्ट पे कहो संत गुण व्यंत कीमतरी पाए नान जिस पावित लय मिलाए जे पाए कुसत एक सत पुर पूर्ण विवेक आओ मोल न पहुंच प्राणी।

जपने एहो हर रस पावे जन को ए अमृत पीवे अमृत सो हो ए उस प्रकार ना ही कदे बिना जाके मन पर टेगुम तास।

मंत एक आस राखो मन माए सर्व रोग नान मिर जाए। जिस धन को चार कुंडल धावे सो धन हर से बाते पावे। जिस सो को निज बाछे मीर सो सुख साधु संग परी। जिस सो बाको करे भली करनी सासो बाबा जर की सरनी।

यार के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती अरणीत भली सुगणनी शोभा तनवंत हृदय वसे पूर्ण गुरमंत सात संग प्रभ देव निवास सब सुख नान प्रगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार।

साध संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रगाश अशपदी संत संग अंत प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सर समिगरी एक घट माए अनग्रंग नाना निष्ठाए नौन दे मनत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाध अन तैनात कह न जाए अचर्ज विस्माध

चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मन सकल देवता सुंदर चतुर तत्कावे समदा सी एक दिष्टे ताए फल दिशन के मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहु निधान जपे मन कोए सब जुमे ताकी गत होए गुण गोविंद राम तुन बाणी सिमर सास तरवेद बखाणी सल मधान केवल हर नाम गोविंद भद के मन विश्राम कोट परा सास संग मिटे संत कृपा दे जमते छुटे जाके मस्तक कर्म पर पाए सास सुन नाम ते

करते कह कढ़ने ना इस मार तौल धर्म दैगा पूर संदोख दाव रख्या जिन सूर जेको बुझे होवे सचार तबले उपर केता भार धरती होर परे होर होर तिसते भार तलै कवन जोर जी अजात रंगा के ना सुमना लिखिया बुड़ी कलाम एहू लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होए केता दान सवाले रूप केती रात जाने कौन कूद कीता बसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ।

असंग जब असंग भाव संघ पूजा संघ तब दाओ संघ ग्रंथ मुख वेद पहाड़ संघ जोग मन रह संघ भगत गुण ज्ञान विचार संघ सती संघ दातार असंग सूरम पक्षार संघ मोहन।

संख मूर गंध घोर संख चोर हराम कोर संख अमर कर जाए जोर संघ अलबड़ हत्या कमाए असंग पापी पाप कर जाए संघ कूड़े आर कूड़े फिराए संख मलेश मल भाए संख निंदक सिर

será que ese día que te quite vos de आखे है दान वाखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव किते आखे है आखन पाहे किते कह कह उठ जाए ते किते होर करे ता आख न सके कही के जे उड़ पावे ते बड़ो ए नान जाने साचा सोए।

दोनों बौन बने वे संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित्त गुप्त लिख जाने लिख ले धर्म चारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सुवारे गावे इंदन दास बैठे देवते अंदर नाले

तव सर्व नाम कते कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजा छंद नमस्तम अकाले नमस्तम कृपाले नमस्तम रूपे नमस्तम नूपे नमस्तम भिखे नमस्तम लेखे नमस्तम काय नमस्तम जाय नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम नामे नमस्तम ठामे नमस्तम कर्म नमस्तम धर्मम

सदा है। सदैव स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्व साज है, समस्तल सलाम है, सदैव अल आताम है, निर्भ

सैन रुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है।

चंद वह प्रसाद। नमो नरक नाशे प्रकाशे रंगम स्वरूपे भंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न बोधरे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न

पवित्र हमारे मारिया, आभा दे मुझे वरिय मन काल का त्रास न वरिय, उजो सदा हमारे पच्छा सिरियत जो करे और अच्छा राख लियो, मोहे रखन हारे साहेब संत साहे प्यारे दीन बंदुष के हंता तुम हो। पुरी जिदर दसकंता काल पाए, ब्रह्मा अवतरा काल पाए, से जीव अवतरा काल पाए, करवचन प्रकाशा सरल काल का की अतमासा जमन काल जोगी सब की हो, बेदराज ब्रह्मा जो थी हो जमन काल।

जागी एक बार चौपी को के चौपी समय सदरा सहस बनी जय हर सहस बंदी इनकी जय भाद्र सुधी अष्टमी रविवार तीस तद्रगन सुधारा सुई जय।

ऐसा सतगुरु जय मिले तिसनु सर संपिए विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर बसे मन आए हरे आप मूल कह भगत न के नानका जिन पले पाया रास मेरी मनमन जारा रास मेरी मनमन जारा सतगुरु ते राह जानी हर नित जप जियो ला कटे दिहाड़ी।

कहे नानक शिष्ट का मूल रचया जोत राखी दत्त जग में आया मन चौ पिया प्रभाकम सुनिया हर मंगल गाव से गिर मंदिर बनया हर गाव मंगल नि सकिए सोग दुख न व्यापे गुरचरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनंत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम

0: सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर्ज में सो कच निकाच महला पहला
1: वडी वडे आई जा वडा ना वडे वडे आई जा सच ने वडे वडे

महाराज जी दे प्यारे आए, सेवा कीती किन्या ब्रह्म ज्ञानियां साधुआं संतां ने। ये अमृत सरोवर दी कहिंदे धरती भी शोभनीक हो गई, ये अमृत सरोवर भी शोभनीक हो गया, इहदे विच जिहड़ा जल शोभा पा रहा है ये भी शोभनीक हो गया। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। कहिंदे ये अमृत जल है भाई, मृत्यु तो रहत करन वाला जल है। ये जदों पूरा साज तैयार हो गया वाहिगुरु का, अमृत सरोवर तैयार हो गया, कहिंदे फिर वाहिगुरु जी ने इहदे च कला रख दित्ती कि सिख दे सारे मनोरथ संपूर्ण करन दी ताकत है इस अमृत सरोवर च। भावना नाल जावे, प्यार नाल जावे। अज साढ़े प्रचारक कहन लग पे आ जी अमृत सरोवर च स्नान करके की लै लेना, ते अबदाली नू जदों मार पई ना सिंघां दी, अबदाली ने पुछया कौन ने, उहदे वजीरां दस्या जी सिख ने। कहिंदे इन्नी ताकत इन्हां च कित्थों आई? वो कहिंदे जी गुरु इनो का बलि भयो है, इनको आबे हयात दियो है। इन्हां दा गुरु बड़ा बलि होया, उन्ने इन्हां नूं अमर दी दात दित्ती है। पता नहीं की घोल के दे गया इन्हां नूं, खंडे च बाटे च, ना ही मौत तो डरदे आ, ना ही दुश्मन तो डरदे आ, ना लड़न तो ना मरन तो। ते कहने दूसरा इन्हां नूं इन्हां दे गुरु ने अमृत दा कुंड दिता, कहिंदे अध मरे भी उहदे च जाके इशनान कर लैण, इन्हां च जान पै जांदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये अध मरे भी एक सुआस भी बचदा होवे ना, कहिंदे नौ वर नौ हो जांदे उत्थे इशनान करके। ताब दाली अमृत सरोवर पूर्ण आया सी, पंथ प्रकाश पढ़ के देखियो कदे। अबदाली दे वजीर कह रहे है भी इन्हां दे गुरु ने इन्हां नूं अमृत सरोवर च ऐसी ताकत दित्ती है कि अध मरे भी ताकतवर हो जांदे आ, जान पै जांदी है इन्हां च। ते साडे गुरु घरां च बैठे कह रहे है इत्थे इशनान करन दी की लोड़ है। क्यों भाई, क्यों नहीं जरूरत? ठीक है थोनू नहीं होएगी, पर जेड़े गुरु रामदास दे बच्चे ने, गुरु अर्जन देव जी दे पुत ने, उन्होंने जरूरत अज भी है, उन्होंने पहला भी सी, उन्होंने अगे भी रहेगी। उन्होंने मनोरथ पहला भी पूरे होंदे सी, उन्होंने अज भी होंगे, उन्होंने गांह भी पूरे होंगे।

सारे संसार च जय जयकार हो गई। सब दुख संकट संसे चोरे लै गए ने। जदों दी महाराज जी ने अमृतमयी बख्शिश कीती है, पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया। कहिंदे ओ वाहिगुरु जिहड़ा पूर्ण पुरख है, अविनाशी है, जमण मरण तो रहत है, जिहदा जस वेद भी गांदे ने, पुराणा ने भी गाया है। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्याया। महाराज जी कहिंदे परमेश्वर ने अपनी लाज रखी है। ये अमृतसर दी, अमृत सरोवर दी जिन्नी भी जो सेवा हुई है, ये वाहिगुरु ने लाज रखी है, ता हुई है। आप ही महाराज जी ने गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे अपने नाम नूं त्याउण दी दात बख्शी है सानू। नाम दे आसरे ही महाराज कहिंदे ये अमृतसर साहब दी पावन धरती ते गुरु रामदास दे दर ते, गुरु रामदास दे अमृत सरोवर च नौ निधियां नाभ निध रिध सिद्धिन्ने करते तोट ना आवै काई राम। नौ निधियां अठारह सिद्धियां रिधियां सब महाराज जी ने दे दित्तियां ने, किसे प्रकार दी कमी नहीं होंदी। खात खर्चत बिलचत सुख पाया, करते की दात सवाई राम। कहिंदे खा रहे ने, खर्च रहे ने, वरत रहे ने, सुख पा रहे ने गुरु के सिख, पर महाराज दी दात वधदी ही जांदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उत्थे महाराज जी दी कला वरतदी है ते कला दे विचों गुरसिख संगतां खा रही ने, लंगर छक रही ने, बिल्डिंगा बनिया ने, वरत रही ने, उन्होंने तो सुख पा रही ने, नाले दर्शन कर रही ने। बिचे ठग चोर भी रजी जन्दे है, पर लेखा देना औखा हो जाना बाद च। महाराज के घरों का घटना नहीं कुछ, इत्थे तां वधना ही है, पर उन्हां नूं जरूर लेखा देना पैंदा है। जिहड़े महाराज दे संगत दे खजाने चों ठगी मारदे है, गुरु रामदास दे दर ते कोई कमी नहीं होनी कदे। दात सवाई निकुट न जाई, अंतर जामी पाया। कहिंदे कदे घटनी नहीं दात, बहुत सवाई है, बड़ी है, बड़ी तो बड़ी, जिन्नी बरतदे उन्नी बद्दी है, क्योंकि अंतरजामी वाहिगुरु पा लिया। गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे असी ते उहदी दात है, ना वाहिगुरु कदे घटदे आ ना कदे उहदी दात घटदी, बद्दी हो ही जांदी है। कोट विघन सगले उठ नाठे, दुख ना नेड़ा आया। करोड़ा विघन कहने सारे उठ के भज लेंदे जदो वाहिगुरु जी दी आमद हुंदी है। जदों महाराज जी आउंदे आ ना सामने, किसी की ताकत नहीं खलो जाए। कलयुग महाराज जी नूं मिलिया गुरु नानक देव जी नूं, कहिंदा जी मैं कर दांगा। महाराज जी कहिंदे जिथे असी आए उथे खलो के दिखाई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हाथ जोड़ गया, कहिंदा महाराज तुहाडे अगे कौन खलो सकदा। महाराज जी दे अगे किसे दुख विघन तां कुछ भी नहीं। वड्डियां तो वड्डियां ताकतां दी हिम्मत नहीं खलो जाण।
शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भोख सवाई राम, अंदर नू शांति आ जाती है, सहज टिका जाता है, आनंद बहुत खुशियां जांदियां ने। जिहड़ी भुख कदे भरदी ही नहीं सी मर कहिंदे खत्म हो जाती है, वो भुख रहिंदी ही नहीं मुड़ के किसी भी चीज की। नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड़ियाई राम। महाराज जी कहिंदे असी भाई वाहिगुरु दे गुण गाउने आ, तुसी भी गाओ। जिदी वड़ियाई जिदी उपमा हैरान करन वाली। महाराज जी दा हर कार्ज ही हैरान करन वाला है। जिसका कार्ज तिन ही किया मानस क्या विचारा नाम। महाराज जी कहिंदे जिहड़ा अमृत सरोवर साजिया गया है, हरिमंदर साहिब जी की सेवा हुई है, कहिंदे भाई जी का काम सी उन्हें किया है, इत्थे कोई मानस बेचारा की कर सकता है। भगत सोहन हर के गुण गाव है, सदा करह जयकारा राम। भगत शोभा पाउंदे है महाराज जी दे गुण गा के, उहदे जय जयकार करके महाराज जी के दर ते शोभा पाउंदे आ। वाहिगुरु की दरगाह दे विच जाके भी गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे।

अमृत जल का सम्मान दिते तो बिना कोई वचन नहीं किया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। भाई अमृत जल है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहण तो भाव है महाराज जी ने भी बाणी च ही वचन किया, महापुरुषा ने भी अपने वचन नहीं बनाए। बिच अमृत जल छाया राम, गुरु अर्जन देव जी का वचन है, तुरकी बाणी का वचन है। जे कोई फिर भी अदब ना करे तो फिर गुरु अर्जन देव तो बेमुख नू की कह सकते हैं आपा, तुरकी बाणी तो बेमुखा नू की कह सकते हैं। हाथी खड़े हैं फिर तो। सो महाराज जी कहते जल नहीं अमृत जल है। किधे आधार नाल अमृत जल बने? शब्द के आधार नाल।

एक वेदांत का ग्रंथ है बिरती प्रभाकर, उदे च सृष्टि की उत्पत्ति और नियम बारे बचन आते हैं। कहंदे प्रकृति सृष्टि ईश्वर दे संकल्प चो पैदा होंदी है, ते कहंदे ओ संकल्प च ही सारा विधान रख्या होंदा है। दा संखेप च दस रहे हैं, समा भी नहीं है इत्थे विस्तार च जाण दा। हुण कहंदे ओ जिहड़ा संकल्प है ना ईश्वर दा, उदे च ही सारा विधान है प्रकृति दा। एक संकल्प च महाराज जी ने भी किया, किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। सो जदों महाराज कोई बड़ी ताकत रचदे है उदों गुरमुखो उदे विच ही उदा सारा विधान रख्या हुंदा है। सानू बुद्धि दी कमी है, भावना दी कमी है। असी अपने सतगुरु नू सतगुरु नहीं मानदे, पारब्रह्म परमेश्वर नहीं मानदे, इहदे च गुरु दा की कसूर है। सो महाराज जी ने जेड़ी ताकत अमृत जल नू अमृत बनाउंदी है वो आप अकाल पुरख वाहेगुरु ने सुते सिद्धि रखी है। फिर हर वेले तुरकी बाणी चलती है, वो ताकत जिसनू अबदाली दे वजीरा ने आख्या अबदाली नू कि अद मरे भी होन इशनान कर लैन दुबारे जान पै जांदी। ये उन्हां सिखां नूं पुछ के देखियो उन्हां च किन्नी भावना सी कि अद मोए भी ताकतवर हो जांदे रहे है। गुण निधान मेरा प्रभ करता उस्तत कौन करीजै राम। महाराज जी कहिंदे मेरा वाहिगुरु वो गुणां दा खजाना है, वो की नहीं कर सकदा, किथे अपनी कला नहीं रख सकता, किथे अपनी ताकत नहीं रख सकता। की उपमा करिए, साडे कोल लफ्ज ही है नहीं कोई उहदी उपमा करन दे। संतां की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। महाराज जी कहिंदे साडी तां हे महाराज जी रब दे प्यारियां दी बेनती होई है कि सानू अपने नाम दा रस बख्श दे। नाम दीजै दान कीजै बिसर नाही इक किनो। महाराज यही दान दे दियो बस अपने नाम दा, कि एक खिन भी तुसी बिसरो ना। हर क्षण हर पल थोड़ी याद साडे अंदर अनहद धुन दे रूप दे विच वजदी रहे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइए अन दिनो। महाराज आप जी दे गुण दिन रात गाउंदे रहिए दिन रात। ये रसना नू दात बख्श दे, ये भी दात ही है सत्संग जी। असीं गा नहीं सकते, जदों दात बख्श देन फिर जीभा ही गाउंदी रहिंदी है हर समय। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत भीजै। महाराज जी कहते जिन्हों की प्रीत नाम नाल लग जाती है उन्होंने तन मन वो नाम अमृत नाल भिज जाता है। बिनवंत नानक इच्छ पुनी पेख दर्श

महाराज जी कहते फिर उन्हों की इच्छा भी पूरी हो जाती है। गुरु अर्जन देव साहब जी कहते उन्होंने महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो महाराज जी दर्शन देख के जीते है, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। महाराज तां जान च जान रही है जो थोड़े दर्शन होंगे है, ऐसी अवस्था दे मालिक हो जाते हैं। इनिया बेनतियां प्रवान हुई फुलों की कीमा महाराज जी मेहरामत कर सानू सब नू, असी अपने गुरु नू गुरु दे किते कारज नू सर्व कला समर्थ करके जानिए, ऐसी समत सतगुरु सानू बख्श देन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माय, सतगुरु मैं सतगुर ता पाया सहज।

सम्राट स्वामी कह नानक मान मेरे साचे साहेबा क्या नहीं करता तेरा सब किच है सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कह नानक सच्चे साहेब साचा नाम मेरा आधार कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सदा कुर्बान किता गुरु बिटो कह नानक सुनो संतो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर तहारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै कह नानक अन सुनोमड पागी हो सगल मनोरथ पार ब्रह्म प्रपाया दुख रोग संताप उतरे सुनी सची संत साजन पहे सरसे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नान गुरु चारण लागे सलोक पवन गुरु पाणी पिता दिवस रात दोए दाई दाया

काम हैगा, क्रोध हैगा, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्खा, द्वैध, नफरत, सब कुछ है साडे। लेकिन यह सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बिनस जाए अहमेव, किस तरह? नानक प्रभ शरणागति, वेन वी विल कम इन द सेंचुरी ऑफ द गुरु। जदों मैं सिमरन कर रहा, जदों सिमरन कर रहा गुरु साहब तुसी मेरे ते इन्नी कृपा करती, कोई रोग रहा ही नहीं, तुसी मैनू जोत स्वरूप करता, मेरा मन जिहड़ा जोत स्वरूप बन गया, कोई दाग रहा ही नहीं। ते जदों आपां इह फुरना लैके सिमरन करांगे ना कि मन साडा जोत स्वरूप है, जिहड़े भी सानू रोग लगे, शरीरक रोग लगे, मन दे रोग लगे, वह दूर हो जाएंगे। इतों तक कि अगर तुहाडे शरीर दे विच, मन दे विच तुहानू पता वै, इहनू असीं इंग्लिश दे विच ट्रॉमा भी कहने आ, वह कित्थे है रोग, वेयर इज दैट डिजीज, वेयर इज दैट ट्रॉमा, उत्थे अगर जदों आपां ध्यान ला के सिमरन करांगे ना, सिमरन दा तरीका उही है, उस च कोई फर्क नहीं जो गुरु नानक देव जी ने सानू दस्या, गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, वी हैव टू चैंट फ्रॉम आर टंग, लिसन फ्रॉम आर ईयर्स विद लव। ते वो आपां ध्यान रख के उत्थे सिमरन करना, ते बार बार बार बार अरदास बार बार करनी, रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। कहिंदे कह रहे मेरे ते कृपा हो गई, उन्हें वाहिगुरु दी, द वाहिगुरु जी हैज शोन हिज ग्रेस टू मी ऑलरेडी, मेरे ते कृपा ऑलरेडी करती, उन्हें वेट नहीं करनी कृपा की, यह नहीं मन च फुरना लैके आना कि मेरे ते कृपा नहीं हुई, करती कृपा, गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई। कहिंदे मेरे नाल नाल मेरे जिहड़ी संगत है ना, मेरे भाई बंधु है, संगत च असीं इकट्ठे बैठे हाँ, क्यों महाराज कहिंदे तुसीं संगत च आउणा है, सारयां नूं रख लिया उहने, ही हैज हैल्पड एवरीबडी, क्यों? मैं उहदी शरण च आ गया हुण, हम तिसकी शरणागति, जो दस जो सदा सहाई, रहाओ दी तुक है, इक्को ही है जिहड़ा तुहाडा सदा सहाई है, द ओनली वन इज देयर हू इज गोना हैल्प यू विद एवरीथिंग, किसे शरीर ने नहीं तुहाडी हैल्प करनी, ओह अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु, द फॉर्मलैस वन हू हैज नो फॉर्म, ना रूप ना रेख ना रंग, किच त्रैगुण ते प्रभ भिन्न, तिना गुणा की माया तो उपर रोग जिहड़े है थले रह जाएंगे, एहसास भी नहीं होएगा रोगों का, क्योंकि बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि जिदी शरण च असी आवे ना, सारा दुनिया का जोर, ऑल द पावर इज इन हिज हैंड्स, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास, पूरा वो पूरा वै, पूरा प्रभ राध्या पूरा जाका नाओ, वो पूरा है गुरु प्यारे, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा पूरा है, अधूरा नहीं, असी अधूरे हाँ, तो जदों असी पूरे दे नाल मिल जावांगे तो मन भी साडा पूरा हो जाएगा, रोग नहीं रहेंगे, ए मन के चलना साडा मन जो स्वरूप हैगा, रोग लगना ही नहीं मन। तो जदों गुरमुख प्यारे यह शब्द बार बार पढ़नगे, पहला सिमरन करेंगे घंटा डेढ़ घंटा, जिहड़े चाइल्डहुड ट्रॉमास भी है ना वह भी दूर हो जाएंगे, कि बचपन दे विच कोई गलत काम होया, किसी वड्डे वडेरे ने कोई गलत काम कर दिया, इस पिछे बच्चों का आप बहुत ध्यान रखना होंदा, क्योंकि बच्चे नाबालिग कहिंदे आ ना उन्होंने, बिकॉज लोग कई बार फायदा चकते बच्चों का, आप ध्यान रखना होंदा, ते साडे नाल अगर हो चुका है तो असी महाराज अगे अरदास करनी है कि मेरे च कोई रोग नहीं, कढ़ता तू, तू कढ़ता सीगा रोग लेकिन तू कढ़ता। तो जदों यह चीज़ां मन चो निकल गई ना, तो साडी भगती बहुत उपर जाएगी, नाम की दात मिलेगी, यही साडे रस्ते दे विच रुकावटां ने,
these are the problems which we have on our path. ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਦ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜਸਟ ਓਪਨਸ ਅਪ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਐਨੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਯੂਰ ਕਾਰ ਔਨ ਅ ਫਰੀ ਵੇ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ. ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂਹੀਓ ਹੋਣਾ ਵੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਨਹੀਂ. ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਾਰੇ,

वाणी का है, सेवक जन माने. वट एवर गुरु इज टेलिंग मी आई हैव टू डू दैट. सिर्फ पढ़न तक सुनन तक सहमत नहीं, जो गुरु कहना वह कहना है करना है. तो बार बार अगर कोई रोग लग भी गया वे तो बार बार यह शब्द पढ़ना है, रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख शांत. जो ये करांगे सिमरन करांगे तो रोग खत्म हो जाएंगे, साडे मन नू नाम की दात मिलेगी. क्योंकि नाम की दात किन्ने देनी है, हू हैज टू गिव अस द नाम, सतगुरु जिहड़ा साडे अंदर बैठा है. सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है. तो नाम की दात दे नाल ही असी मालक नू मिल सकते हैं. वो मन जो साडा जोत स्वरूप हो गया, उहदे किरपा दे नाल, उहदे गुर प्रसाद दे नाल, उहदे किरपा सदका उहदे गुर प्रसाद दे नाल जो सानू नाम की दात मिलेगी तो मालक सानू उहदे नाल जोड़ देंगे, साडा मन उहदे नाल कनैक्ट हो जाएगा. ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम. आओ आपां भी कोशिश करनी है, क्योंकि साडा मन जोत स्वरूप है. असी मैल कढ़नी है, बाहर की मैल ते आपां धोंदे रहने रोज, अंतर मैल लगी ना जाने बारों मल मल तो है. कहिंदे बाहर की मैल ते तू धोई जांदा, जिहड़ी अंदर लगी तेरे मैल, द फिल्थ विच यू हैव इन योर माइंड, यू आर नॉट वॉशिंग दैट फिल्थ, आउटसाइड फिल्थ ते तू धोई जांदा. आपां अगले तीन दिन जिहड़े अगले हफ्ते दे शुक्रवार शनिवार एतवार आपां रिट्रीट कर रहे, उत्थे आपां यही करना, कोशिश करनी है कि साड़ी मन की मैल धुप जाए तो महाराज सू समाधि लै जाए. आओ असी कोशिश करिए सिमरन किवें करना वै, जो सू गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने गुरु नानक देव जी ने कहा वै, जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन पावे. वाह कहना सुनना है, गुरु कहना सुनना है बड़े प्यार दे नाल. आओ जी शुरू करिए.

प्रभु को सिमरत न सुख बिहावै, प्रभु को सिमरत न आत्म जीता, प्रभु को सिमरत न निर्मल रीता, प्रभु को सिमरत न अनदक ने

प्रभु का स्मरण निश्चल आसन, प्रभु का स्मरण कमल बिगासन, प्रभु का स्मरण अनहद चुनकार, सुख प्राप्त सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए।

जनका त्रिपत भुगत हर का नाम जनका रूप रंग हर नाम जपत कब परया ना भंग हर का नाम जन की वडियाई हर का नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

पर दर्प को हिरे हे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावहे मिथ्या मान पर लोभ लुभावहे मिथ्या तान नहीं पार उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब भये सफल देह नानक हर हर नाम लय।

जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को राख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधर तन लावहे, तिस को सिमरत परम गत पावहे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह रसंग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस दसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्यागत अवर लुभावे।

जय जय प्रसाद असब हस असवारी मानतिस प्रभु को कबहु ना बेसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरै प्रभ पुने मना। जिन तेरी मान बनत बनाई उठत बैठत सद तसे त्याई तसे त्याई जो एक अलख है। इया उहा नानक तेरी रखै जय प्रसाद।

साध संग दुश्मन समीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस सेव नहीं बैर, साधक संग ना बिगा पैर, साधक संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साधक संग ना ही हो ताप, साधक संग तज सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साधक संग ना कब हूं तावै, साधक के संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर लहै, साधु के संग अजर सहै, साधक संग बसै थानी उच्चै, साधु के संग महल पहुंचै, साधक संग दृढ़ सब धर्म,

छुट्टै, संत कै दुखन सुख सब जाए। संत कै दुख नरक मह पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सो बात हीन। संत के अते को रखे ना कोए, संत कै दुखन थान थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतर। संत कै दुखन ते मुख पवे, संतन कै दुखन काग ज्यों लवे, संतन कै दुखन थर्प जोन पाए, संत कै दुखन

संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीते टूटै, संत का दुखी कित काज ना पहुंचै, संत के दुखी को ध्यान भरमाइय, संत का दुखी उजड़ पाइय, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास ना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी को

सह सुभाय हो वै सो होए करण हार पछाण है सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे समाहे समाये सुख निदान।

नाथ तन संचो हो भगवंत संतजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माये सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठताव हे सो तन हर सेवा ते पाव हे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सोभा को करे भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनुक पावी रोग न जाए रोग मिटे अरव खद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन पर बोध हर कह नाये दह दिस्तावत आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जाकर दे बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ।

छोड़ बेनती करहो अगन सार संग अगन सागर तरहो हर धन के भर लियो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लग हरंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन अर्ध करे प्रभ काजै प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक कुदरे तिनके साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब।

गुरु प्यारी स्वारी सत्संग जीओ, अज असी सारे सतगुरु जी की पावन हजूरी दे विच सरदार मलकीत सिंह जी विरदी उन्हां दी सलाना याद दे विच जुड़ बैठे हाँ। उन्हां दे परिवार वालों, माता जतिंदर कौर जी वालों अते भाई जसमीत सिंह ते भाई सुखदीप सिंह जी वालों उन्हां दी मिठी याद नूं मनाउंदिआं होइआं सतगुरु जी दे चरणां दा ओट आसरा लिया है। आप सब संगतां ने श्री सुखमणी साहिब जी दे जाप श्रवण किते ने, सतगुरु जी का बचन आप जी ने श्रवण किया है। हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। इस पावन शब्द दे विच भगत कबीर जी ने सानू साडे जीवन की सच्चाई बारे जाणू कराया है कि यह जीवन यह सवास सानू बड़े चंगे भागां दे नाल मिलिया है ते इस दी जिहड़ी पाया है जां इसकी म्याद है यह बहुत थोड़ी है। जिस तरह एक बदल की छां हुंदी है वो थोड़े समय वास्ते हुंदी है, जदों सूरज दे अगे बदल आ जांदा ते छां हुंदी है ते थोड़ी देर बाद वो परे हट जांदा है ते वो फिर उस तरह ही धुप आ जांदी है। उस तरह सतगुरु कहिंदे ये साडा जीवन है, ये जीवन थोड़ चिरा है, चलाए माण है, इन्हें सदा नहीं रहना। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। अपनी अपनी वारी के नाल हरेक इंसान ने इतों जाना है। सतगुरु जी धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का वचन है, जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यों बादर की शाई। जो भी सानू दिस रहा है इस जहान दे विच विजिबल है, सब कुछ वो नाशवंत है। किस तरह? जिस तरह बदल की छां है। सतगुरु जी सानू उपदेश करते ने ये जीवन नू सफलियां करन दा यतन करिए, सफलियां करन दा यतन करिए ते सफल करन दा जिहड़ा तरीका है वो है गुरु की शरण में आके गुरु गुरु करना, गुरु के नाम नू जपना, गुरु वाले बनना। सो आओ सारे आपां इस तरह गुरु की चरणा दे विच हाजरी लगवाइए, गुरु की बाणी दे नाल जुड़िए, अगले शब्द नाल जुड़िए जी। सतगुरु जी का पावन शब्द है कि जो नाम है वाहिगुरु का वह हमेशा साढ़े नाल निभदा है, उसनू ध्यौना करिए, उही साढ़े अंत वेले साडा सहाय बनता है। आओ इस पावन शब्द नाल जुड़िए जी।

सिख ओंकार श्री वाहिगुरु जी के फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर

सो खजाने भरपूर करने काल कंटक दूर करने कमाइया विच बरकतां पौनियां जी। ऐस वेले सुखमणी जय साहिब जी की अरदास, आप गुरबाणी कीर्तन दी अरदास, छेपड़ी आनंद साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, हाजरी दर घर सचखंड रखे प्रवान करनी, दरों घरों पामन अटल हुक्म नावें बचके किरतार्थ करो, भुलां चुकां दी खिमा बख्शो।

0: करे मुझा
1: सबके सिमरन तृष्णा बुझे
0: राम के सिमरन सबके सोजे
1: सबके सिमरन नाही जम त्रसा
0: राम के सिमरन पूरन आसा
1: सबके सिमरन मन की मल जाए
0: अमृत नाम रित माहे समाए
1: सब जी बसे साध की रसना
0: नानक जन का दासन दसना
1: सबको सिमरे

0: जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत सारिया ही संगतां दा, मेरे वीर बजुर्ग बीबिया बच्चे सारिया दा धन्नवाद भाई जो चल के आए हो, जिन्हां परिवारों ने सुखनी साहब की सेवा की है उन्हां दा तहे दिल धन्नवादी हाँ। जो खुशियां महाराज सानू दिंदे ने रहमतां करके, वो खुशियां गुरु के चरणा च आ के मनाउणियां ये सब तो उत्तम है। सब तो उत्तम फल इसका है जो बच्चों बच्चों की बर्थडे उन्हां दा जन्मदिन आपां गुरु के चरणा विच आ के मनाउणे हां भाई, असली इत्थे ही मनाउणा चाहीदा है, क्योंकि जिसने दातां दित्तियां ने उसका ही शुक्र करना है। जे असीसां मिलनियां हन ते इत्थों ही मिलनियां ने, जे आपां कहीए भी पार्टियां करके शराबां पिला के उत्थों असीसां लईए उन्हां तों, उह तां विचारे आप नहीं दे सकदे कुछ, उह दूजे नूं की देणगे। जो असीस गुरु तों मिलनी है, असली असीस गुरु की अते गुरु की संगत दी है। सो धन्नवादी हाँ सारिआं दा, सतगुर रहमत करन आप सारिआं नूं चढ़दी कला नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन। नाल ही बेनती करांगा खास करके जो बीबियां सुखमनी साहब दा जाप हर विखे करदियां ने उन्हां दे चरणां च खास करके बेनती है, सारे ही परिवार जिन्हें भी आउंदे ने वध चढ़ के आओ। जो मंगलवार वाले दिन ट्यूजडे 14 जुलाई उस दिन अकाल तख्त का जो हुक्म है, जो उतों जथेदार साहब ने अनाउंस किया है कि जसवंत सिंह खालड़ा साहब जी उन्होंने निमित उन्होंने हरिके पत्तन जा के सुखमनी साहब का जाप करना है, उत्थे ही अरदास होनी है 14 तरीक नूं शामां नूं। सो उन्हां वल्लों सारियां ही सारे ही मुल्कां दे विच सारे ही देशां विच बेनती है कि उस दिन वध चढ़ के हाजरी लवाओ, आपो अपने गुरु घरां दे विच बैठ करके सुखनी साहिब दे जाप। खालड़ा परिवार अते उन्हां दे साथी जो शहीद होए ने उन्हां दे नाल, उन्हां दे निमित सुखनी साहिब दे जाप होणगे अते अरदास होवेगी। ओ महान योधे अपना फर्ज निभा गए ने, अपनी जिंद जान दे के साडे वास्ते राह दस गए ने। सो साडा भी कोई फर्ज बनता है, जे असीं होर नहीं कुछ कर सकते, गुरु घर आ करके सुखनी साहब दे पाठ दे विच हाजरी लवाओ, अरदास दे विच शामिल होवो। तहि दिल तों धन्नवादी होवांगा सारे ही माइपा दे चरणां च बेनती है। वध चढ़ के 14 तरीक नूं शामां नूं इस 4 बजे 4:15 बजे सुखनी साहब दे जाप होणगे अते 6 बजे दे लागे अरदास होवेगी। उस अरदास दे विच सब वध चढ़ के आ के हाजरी लवाओ, गुरु कियां खुशियां प्राप्त करो। आओ हुण कीर्तन सरवण करिए। भाई साहब भाई दलवाग सिंह जी दा जथा आप जी ने कीर्तन सरवण करवाएगा, उस तो बाद दूसरा प्रोग्राम है वो भी करना है। सो आओ हाजरी लाओ, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु वाहिगुरु।

हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सा वास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे।